0: বাইরা
1: মা দিদি শুনতালি ঢোকা করলুস না
0: কি ভয় এটি রাতে কি না রুদে আঁকি
1: দিদি ভিতরে এলুস না মোলা ডর লাই রাখো
0: ল বান কি ভয়
1: মোলা আজ ঘরমা কই নভাগো মৌকা চোপের তুই তল ঘরকে মাইলা দাইলি ভাগের আগো দিদি
0: মাইলা দাইলি পস্তিস লাই ম প্রহরীলাই ফোন করিয়াছো হ্যালো ম মায়া ওড়া সদস্য ইয়া জবরদস্তি ভর একজন মহিলা আউন ভাগ প্রহরী পঠাই দিন হচ্ছে কি ল আব ধেরি নরো কানুনলে কারবাই গর্ছ ভোলি প্রহরী চৌকি র মনোপরামর্শকর্তাসঙ্গ ভেট্ন জামলা
2: महिला किशोरी वा बाल बालिकामाथि हिंसा भएमा सहेर नबसौं सहयोगको लागि पैसा नलाग्ने नेपाल प्रहरीको 100 बाल हेल्पलाइनको 1098 र महिला आयोगको 1145 फोन गरौं वा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा न्यायिक समितिसँग सम्पर्क गरौं।
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
4: यौन हिंसा से बचा जाए और सबकी बचावा जाए। यौन हिंसा सामाजिक अपराध हुए। ऐसे हिंसा पड़ोसी हित दोस्त और नातेदार से भी हो सकत है। अभिभावक लोग अपने लड़के बच्चन के व्यवहार पे ध्यान देवा जाए। उन लोगन के चाल चलन बानी व्यवहार में अस्वाभाविक परिवर्तन आई सकत है। ऐसा होए पे तुरंत उन लोगन से बातचीत करा जाए। बच्चा लोगन के कौनो समस्या भय पे मन मिले वाला साथी लोगन से अथवा अभिभावक लोगन से बात जाए।
5: अनुरोध आग लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी नेपाल।
6: अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकारका कुरा
7: मानव अधिकारको महासन्धिमा यो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेर यो मौलिक अधिकारमा व्याख्या गरिएको छ।
8: सफलता अनि संघर्षका कथा।
9: म दृष्टिबीन भइसकेर पढ्न थालेपछि होइन मैले पढे भने त कुनै ठाउँ पाउँछु होला नि भन्ने पोजिटिभ थिङ्किङले नै गर्दा म यहाँसम्म आइपुगे।
6: यो हो कार्यक्रम अपाङ्गता अधिकारका कुरा। डिसेबिलिटी राइट्स फन्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालको उत्पादन कार्यक्रम अपाङ्गता अधिकारका कुरा।
10: रेडियो लुम्बिनी र तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट।

0: के भयो? के को हल्ला खल्ला भयो?
1: के हुनु? डोजर चलेको नि। अब त हाम्रा दुःखका दिन सकिए।
2: के सकिनु नि? गाउँमा सडक बने पनि बसा हिँड्नु पर्छ।

0: सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइनमा हुने मिथ्या समाचार दुष्प्रचार र घृणा जन्य अभिव्यक्ति कानूनी रूपमा दण्डनीय छ। अनलाइन हिंसा नगरौं र नसहौं।
1: स्वास्थ्यमा बटवल
2: बाल बालिकादेखि वृद्धसम्मका स्वास्थ्यका कुरा,
1: असल अभ्यासदेखि नीतिका कुरा,
2: तपाईँको जिज्ञासा अनि सम्बन्धित निकायको जवाब।
1: बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रेडियो लुम्बिनी एफएम 96.8 मेगाहर्जबाट
3: हरेक हप्ताको बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 बजेबाट
2: कार्यक्रम स्वास्थ्यमा बुटवल। रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज, शान्तिको आवाज।
4: मैं खडेरी धूर बनकर भुर्र उठूं, तब तू मोरलाक पानी बनकर उठ। एक घची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तू इन बाफ बनाकर उड़ा कर फिर से मैं इनसे दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम, हमारा मिलन असंभव है, कारण तू बद्रे मैं धरती। हाँ, वो एक दूसर से दूर रख पे करल कब्बुने और रेना मैया के एक उदाहरण हो। दिल के पता वो एक अटूट मैया के अंश हो। दिल के पता

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: तीन महीना तीर्नु होस्, सात महीना चलाउनु होस्, क्लासिक टेक को 200 Mbps इंटरनेट सात महीना को लागि मात्र रु 5,700 मा, साथ ही

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: गर्मी के मौसम में सरुआ रोग से बचा जाए। गर्मी के मौसम में मलेरिया, चिकनगुनिया, कालरा, डेंगू, हैजा जैसन विभिन्न सरुआ रोग फैल सकत है। सरुआ रोग फैलाए वाला माछी, मच्छर ई सब से बचा जाए। सरुआ रोग से बचे के लिए शुद्ध और उबालल पानी पिया जाए। बासी और सड़ा गला खाना न खावा जाए। घर के भीतर और आसपास सर सफाई रखा जाए। अनुरोध है लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
2: होइन काका, बहिनीको बिहे गर्ने बेला भएन र बिहेको केही सुसारै छैन त।
3: होइन के भन्छे हो, यस्ता अपाङ्गता भएकालाई पनि कसले बिहे गर्छ र? बरु 50-60 वर्षको घरबार बिग्रेको त्यस्ताले लगे त हुने हो, नत्र यस्ता अपाङ्गता भएकालाई कसले बिहे गर्छ र?
2: के भनेको काका तपाईँ, हाम्रो जस्तै बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने अधिकार बहिनीको पनि छ। बहिनी अपाङ्गता भएको व्यक्ति भए पनि उनी आफैमा सक्षम छिन्। बिहे गर्न चाहे उनले आफूलाई मन परेको व्यक्ति

सुख शांति र समृद्धि का लागि जीवन विज्ञान जीवन जीवने कला आध्यात्मलाई जोड्ने कार्यक्रम जीवन विज्ञान फरक प्रस्तुति का साथ हरेक दिन मात्र रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज मा।